कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, अररम तररम दुनिया के कदे कदे गम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

तेरे मंजिल की, वो तेरी मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का साथ है, मिलने की बात है, तू क्यों उदास है।

प्यारी फगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए।

जेब जब तक है तेरी भरी, तेरे पहलू में नीलम परी। जेब जिस दिन भी खाली हुई, जान रह जाएगी।

तुम आज किसी कहो जाओ ने मुझे बाल माँ अब न बताओ रे आओ रे आओ रे आओ रे आओ रे।

मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था ए घटा परत जा।

तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा घाव पे घटा हाँ बरस जा।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था ए घटा परस जा।